0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं।

0: म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
4: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं, यह प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत, अदम्य साहस और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उद्देश्य क्या कहते जनजातीय गरिमा उत्सव मना रहे हैं।
3: द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज नोटिफाइड द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स अमेंडमेंट रूल्स 2026, इंट्रोड्यूसिंग की चेंजेस टू रजिस्ट्रेशन टाइमलाइंस and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from the arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180-day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oaths as judges of the Apex Court. The Centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. The appointments were made weeks after President Draupadi Murmu promulgated the Supreme Court number of judges Amendment Ordinance 2000.

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं एफएम गोल्ड की 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, आपसे मिलने का मन तो हर बार करता है, और लेकिन कभी कभी मिलने का मौका मिलता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा रिश्ता और आपका रिश्ता बहुत पुराना है और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम यही कामना करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है दोस्तों कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर सुबह के बाद रात आती है तो रात के बाद फिर से नया सवेरा आता है। इसीलिए वक्त चाहे कैसा भी हो, जैसा भी

0: और अब बात करते हैं दोस्तों आकाशवाणी की 90 सालों की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सैटेलाइट युग की शुरुआत हुई। 27 फरवरी 2002 को आकाशवाणी ने अपनी पहली डायरेक्ट टू होम डिजिटल सैटेलाइट सेवा शुरू करके एक नई तकनीकी क्रांति का आगाज किया। इस सेवा के माध्यम से श्रोताओं को एनालॉग के बजाय सीधे सैटेलाइट के उच्च गुणवत्ता की स्पष्ट ध्वनि के कार्यक्रम मिलने लगे और इस डिजिटल सेवा में समाचार, मनोरंजन और लोकप्रिय एफएम चैनलों के कार्यक्रमों का एक बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत किया गया। इस पहल से आकाशवाणी की पहुंच भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्पष्ट प्रसारण पहुंचना आसान हो गया। तकनीक के इस नए प्रयोग ने रेडियो को डिजिटल युग की ओर अग्रसर किया और आकाशवाणी को एक आधुनिक और वैश्विक मंच पर स्थापित किया। और इसके अलावा ये ऐतिहासिक सफर देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण को दर्शाता है, जब एक ऐसी आवाज का जन्म हुआ जो पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। आकाशवाणी एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों को ऐसी गूंज निकली जिसमें एक राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को आकार दिया तब से लेकर अब तक भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। तो ये रही आकाशवाणी की बात। अब हम सुनवाते हैं आपको इसी संबंधित एक खास कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत और बात कर रही हैं रश्मि कुकृति। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं और दोस्तों ये कार्यक्रम है घर आंगन। आप जैसा कि जानते ही हैं कि आकाशवाणी केवल प्रसारण सेवा ही नहीं बल्कि हमारे देश की चेतना का वो अदृश्य तंत्र है जिसने मिट्टी से उठती आवाजों को, सीमाओं पर तैनात सन्नाटों को और घरों में भीतर धड़कते छोटे छोटे सपनों को एक तरंग में बांध दिया है। और आकाशवाणी के जो 90 साल है ना, उसके इतिहास में तो महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही ही है। ये जो भूमिका है वो केवल भागीदारी तक सीमित नहीं है बल्कि एक सशक्त उपस्थिति के रूप में सामने आई है। और इसी श्रृंखला में इसी का एक उदाहरण है जो आज हमारे मेहमान हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं डॉक्टर शशि रानी। डॉक्टर शशि रानी दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। आप प्रोफेसर के रूप में मीडिया पढ़ाती हैं छात्र छात्राओं को, तो बहुत स्वागत कर रहे हैं उनका एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर शशि जी, आप तो मीडिया पढ़ाती हैं और मीडिया में एक बहुत सशक्त उपस्थिति है हमारे एफएम चैनल्स की, हमारे मीडियम वेव चैनल्स की और अन्य जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी, तो उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे और आपके जो रेडियो का रुझान है उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आप ये बताएं कि रेडियो से कैसे जुड़ी हैं आप?
2: रेडियो से तो मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ। जब कभी मैं 10वीं 12वीं क्लास में थी तो मैथ के सवाल करते हुए भी रेडियो मेरा चलता ही रहता था, या कहीं एक कमरे से दूसरे कमरे में सफाई के लिए जाना है तो वहां पे भी रेडियो सेट लेके ही जाना था। रात को हवा महल देखना, गाने सुनना, तो ये तो पुराना ही रहा है। रेडियो सुनना तो मेरी हॉबी रहा है बचपन से।
1: जी क्या बात है। देखिए, एक मीडिया पढ़ाना और रेडियो से प्रेम, ये तो

0: जिसे कहते हैं ना सोने में सुहागा जैसी बात हो गई। और इसके अलावा अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं पिछले 29 वर्षों से अम्बेडकर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ और मेरा जो काम है, जो मेरा रिसर्च वर्क था, वो कुकुमुत्ता पर मैंने एमफिल किया था और हिंदी की प्रगतिशील कविता में लोक तत्व पर मेरा पीएचडी है, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ निर्देशन में करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का जो पाठ्यक्रम है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला कॉलेज है जहां पर ये शुरू हुआ। और अगर मैं ये कहूं कि ऑनर्स के स्तर पर ये पूरे भारत का पहला अगर कॉलेज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ, डायरेक्ट यूजीसी से ही ये कार्यक्रम जो आया था। अब तक अंग्रेजी वगैरह में थे लेकिन हिंदी में नहीं था, तो हिंदी माध्यम से पत्रकारिता में आगे बढ़ना, जबकि सोचा जाता है कि अंग्रेजी के बिना इसमें कोई भविष्य नहीं है, तो उस भविष्य को तलाशने की और एक ही कोशिश थी, अच्छा प्रयास था।
0: एक महिला प्रोफेसर के रूप में क्या लगता है कि कहाँ तक रेडियो वो भूमिका निभा पाया है?
1: मुझे लगता है कि यदि मैं ये कहूँ कि रेडियो हमारी जो भारतीय जीवन धारा है उसकी प्राण रेखा है, जीवन रेखा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अन्य जो माध्यम है वहां तक जो हमारा हाशिए का समाज है उनकी बात नहीं की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो हमारा रेडियो है वो हाशिए के समाज की बात करता है, उन लोगों की बात करता है जहां तक वो लोग नहीं जाते हैं।
0: आकाशवाणी,
1: तो इस रूप में जो आकाशवाणी है उसकी जो भूमिका है उस तक कोई जा ही नहीं सकता,
0: क्योंकि जब हम बात करते हैं हाशिए के समाज की, तो वाकई आकाशवाणी की जो सोच है, उसकी जो कार्यक्रमों की जो विचारधारा है, उसका पहला जो मंत्र है वो यही है कि ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो आवाज वहां तक पहुंच पाए, कोने कोने तक पहुंच पाए। और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उन्होंने अपनी बात को पहुंचाना चाहा तो उन्होंने आकाशवाणी को चुना ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनकी बात पहुंच पाए।
1: क्योंकि एक रेडियो एक सेतु का काम कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के मन की बात हो या जनता के मन की बात हो, तो एक दूसरे तक जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक समस्याओं के समाधान नहीं निकलेंगे।
0: जी बिल्कुल, इसके कार्यक्रम भी समर्पित रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, और कदम से कदम मिलाकर चलता रहा है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आप जब अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाती हैं, उनका आकाशवाणी के प्रति कैसा रुझान है?
1: आजकल के जो बच्चे हैं वो आकाशवाणी की तरफ उनका रुझान, जैसे समाचार के प्रोग्राम हो गए, उनकी तरफ थोड़ा कम है। उनके जो FM के जो अन्य चैनल है उनकी तरफ जो रुझान है उनका ज्यादा है। लेकिन जैसे अगर मीडिया के स्टूडेंट्स होने के नाते अगर वो उनसे जुड़े हैं तो बहुत कुछ मिलेगा उन्हें सीखने के लिए, जैसे बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तरह तरह के जो प्रोग्राम है इसमें होते हैं, उनसे कुछ एक सीख मिलती है।
0: बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि जब नए गानों की सुनने की बात आती है तो जो नए बच्चे हैं वो FM रेनबो से जुड़ते हैं।
1: हाँ,
0: और उसके बाद जब उनको समाचार सुनने होते हैं, क्योंकि भाई करियर भी तो बनाना है,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको जब समाचारों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक फुल अप टू डेट रहना होता है, तो वो FM गोल्ड से जुड़ते हैं क्योंकि वहाँ समाचार भी है और गीत संगीत भी है, तो कहीं ना कहीं वो रेडियो से कनेक्ट बन ही जाता है। ज्यादातर आप आकाशवाणी कब सुनती हैं?
1: ज्यादातर मैं आकाशवाणी जैसे या तो ड्राइव कर रही हूँ तब सुनती हूँ, या फिर रात को जैसे कुछ काम करना है तो उस दौरान मैं आकाशवाणी।
0: यानी कि आपकी जो दिनचर्या है उसमें से आप समय निकाल ही लेती
1: हैं। जाते हुए भी सुना जाता है, दोपहर को आते हुए भी सुना जाता है, या शाम को कभी जा रहे हो तब भी सुना जाता है।
0: जी,
1: तो आकाशवाणी तो सुना ही जाता है।
0: तो यानी कि आप जुड़ी हुई है। कौन कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं?
1: जैसे कई बार दोपहर को जाती हूँ तो सखी सहेली आ रहा होता है
0: जी,
1: शाम को जाती हूँ तो सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम आता है, मार्केट मंत्र आ रहा होता है,
0: FM गोल्ड पर आता
1: जी,
0: है,
1: तो ये प्रोग्राम मैं सुनती हूँ।
0: तो देखिए हमारे साथ यहाँ शशि रानी जी मौजूद हैं और हमारी एक प्रबुद्ध श्रोता है, एक समर्पित श्रोता है, मीडिया पढ़ाती है और बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं आकाशवाणी के बारे में। मीडिया पर एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं, क्या करियर देख पाती हैं छात्र छात्राओं के लिए?
1: करियर की अगर हम देखें तो बात करते हैं कि जैसे AI आ गया है तो उसकी वजह से जो मीडिया के जो छात्र हैं उनके लिए संभावनाएं कम हो गई हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि जो AI है वो एक यंत्र है, तो लेकिन जो मनुष्य की जो चेतना है, मनुष्य का जो स्पंदन है, उसकी जो संवेदना है, उसका वो पर्याय नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो एक मनुष्य की, एक संवेदना की, एक चेतन व्यक्ति की ही जरूरत पड़ेगी। तो उससे मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको साधन बनाए, साध्य ना बनाए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जब कंप्यूटर्स के आने

0: की बात हुई थी तो भी एक डर जनमानस में हुआ था कि अगर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो लोगों की नौकरियां कम हो जाएंगे, जबकि हमने देखा जैसे जैसे समय बीता कि कंप्यूटर्स के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिले। तो मुझे लगता है शायद एआई में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।
1: हाँ, बिल्कुल
0: बेहतरी की ओर जाएंगे, मुझे लगता है और जॉब्स क्रिएट होंगे, लेकिन अलग अलग तरह के
1: अलग अलग
0: हैं। हमें अपने आप को दोबारा रचने की जरूरत है। तो महिलाओं की क्या भूमिका देख रही है मीडिया में, कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है?
1: जहाँ तक महिलाओं की बात है तो कोई भी जो समाज है जब तक वो महिलाओं को साथ नहीं लेके चलेगा तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता
0: जी।
1: वो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है, तो जब महिलाएं साथ होगी तभी समाज होगा। मुझे लगता है कि महिलाओं के आने से जो एक परिवेश है वो एक समरसता का परिवेश बनता है, और वो हमारे आसपास घरों में जितना ज्यादा बढ़ेगा, घरों में हो या कार्यक्षेत्र में हो या समाज में हो, जितना हम उनके लिए संवेदनशील रहेंगे उतना ही जो समाज है जवाबदेह भी होगा और उनकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो महसूस भी करेंगे। तो महिलाएं तो साथ साथ चलनी ही चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिविटी जो रचनात्मकता उनके अंदर है उसका जो अभाव है वो नहीं रहेगा।
0: बहुत सुंदर। डिजिटल मीडिया का क्या भविष्य देख पा रही हैं, और जो छात्र छात्राएं करके निकलते हैं मीडिया की डिग्री लेकर निकलते हैं वो किस प्रकार से उसके साथ समन्वय बिठा पाते हैं?
1: जैसे इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए उनका अखबार में रुझान है तो वहां पर उनका जो स्क्रिप्टिंग है जो लेखन का स्तर है जब वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो फिर वो कोई भी जो क्षेत्र हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो रेडियो, क्योंकि लेखन से ही हर काम जो है वो शुरू होता है। अगर आपका लेखन अच्छा है तो आप मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो दूरदर्शन, आकाशवाणी, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उन सभी में कार्यरत हैं।
0: और चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को?
1: चलते चलते मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप FM से, आकाशवाणी से जरूर जुड़े। जो भाषा FM के पास है, आकाशवाणी के पास है, वो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। भाषा के साथ खिलवाड़ कि जो गुंजाइश है वो यहाँ पर नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा ही हमारा जो है माध्यम है और हमारी पहचान है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कौशूल। तो अपनी भाषा जो है वो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो उससे जुड़ना अपनी पहचान से जुड़ना है और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा शशि जी ने। और आकाशवाणी भाषा का तो संसार है ही, बल्कि यहाँ स्मृतियाँ, संवेदनाएं और सामूहिक चेतना का भी ये एक संसार रचता है। और हम ये भी कहेंगे कि महिलाओं ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसकी आत्मा के समान रही हैं। तो नारी प्रतिभा, संवेदनशीलता और समर्पण ने आकाशवाणी को वो आत्मीयता दी है श्रोताओं, जिससे कि ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन गया है, जैसे कि ये कार्यक्रम है जिसका नाम है घर आंगन। और दोस्तों आज इस घर आंगन में हमारे साथ हैं शशि रानी जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में मीडिया पढ़ाती हैं, प्रोफेसर हैं। आज हमने उनसे ढेर सारी बातें की, तो हम उनकी पसंद का गीत सुनेंगे और फिर लेंगे विदा। इस मौके पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: वाह क्या बात है। तो आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत।

0: इतना सुरीला ये गीत था। इस गीत के साथ ही समेटते हैं ये मुलाकात, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज की पत्रकारिता विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर शशि रानी से विशेष बातचीत। बात करेंगी रश्मि कुकरेती।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्षों की शुरुआत कितनी खुशी की बात है ना। और सच में जब हम खुशी की बात करते हैं तो खुश रहना सेहत और रिश्तों के लिए फायदेमंद साबित होता है। जैसा आप जानते हैं, हंसी की ठहाके, मुस्कान, खुशियां आपके दिन भर की थकान दूर कर देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसका कारण जाना है? दरअसल गप्पे मारना समय की बर्बादी नहीं बल्कि सेहत का राज है। अपने साथी और दोस्तों के साथ गप्पे मारना आखिर किसे पसंद नहीं होता। अब साइंस भी इस बात को मानती है कि गपशप करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तो एक रिसर्च में पाया गया है कि जो साथी गपशप करते हैं वो काफी खुश रहते हैं और ये गपशप आमतौर पर मजेदार और हल्की फुल्की होती है, तो इनसे रिश्तों में भी ताजगी बनी रहती है। ये बातें आपके अनुभव, मजाक या कॉमन आदतों से संबंधित हो सकती हैं। इससे एक दूसरे पर भरोसा और सांझा यानी कि समझ पड़ती है और बातें करने से दो लोगों के बीच की दूरियां कम होती हैं। जब दो लोग बातें साझा करते हैं तो अक्सर एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ी होती हैं। जब आप किसी के साथ दिल की बातें करते हैं तो मन को राहत मिलती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। और खास तौर पर महिलाओं पर तो गपशप से पॉजिटिव असर भी देखने को मिला है और वे खुद को ज्यादा खुश, संतुष्ट और इमोशनली सिक्योर महसूस करती हैं। तो है ना कितना आसान सा उपाय, गपशप करिए, खुश हो जाइए और अपने और रिश्ते को यानी कि सेहत को भी साथ साथ में मजबूत बनाइए।

आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन उससे पहले कुछ काम भी कर लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रख लीजिए। यानी कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। और सिर्फ योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, थकान, कमर दर्द, बीपी, शुगर, ये सब आम हो गया है। गोलियां खाते हैं, पर हल कहाँ है? हल है आपके अंदर। योग करें, स्वस्थ रहें। योग मतलब सिर्फ आसन नहीं, योग है शरीर, मन और सांस को जोड़ना। रोज 30 मिनट काफी है। शुरुआत कीजिए अनुलोम विलोम से। सांसों को साथ लिया तो मन शांत, और फिर कीजिए ताड़ासन। रीढ़ सीधी, कद लंबा, आत्मविश्वास ऊंचा। बुजुर्गों के लिए सुखासन, ऑफिस वालों के लिए कुर्सी पर बैठे बैठे गर्दन के व्यायाम। योग सबके लिए सब जगह है। योग शरीर को लचीला बनाता है, पर असली कमाल मन पर करता है। यानी गुस्सा कम, नींद बेहतर, इम्यूनिटी मजबूत। जीवन में हमें सिखाया कि दवा के साथ दुआ और प्राणायाम भी जरूरी है। न मैच चाहिए न पैसा, बस एक संकल्प कि मैं रोज योग करूंगी, अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगी। क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी देश बदलेगा। तो उठिए, सांस लीजिए और बोलिए अपने साथ, योग करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।

और अब बात करते हैं कुछ घूमने और घुमाने की। जी हाँ, यात्रा करना जीवन से तनाव को कम करना है, यानी यात्रा करना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है। कई लोग यानी कुछ लोग नई जगह खोज करने और लोगों से बातचीत करने, अलग अलग संस्कृति, संगीत, त्यौहार और दुनिया के लोगों से जीवन जीने के तरीकों के बारे में जानने के लिए यात्रा करते हैं, जबकि कुछ लोग शांति, खुशी और आत्मप्रेम पाने के लिए यात्रा करते हैं। हमारा दैनिक जीवन तनावपूर्ण स्थितियों से भरा हुआ है, ऐसे में अपने दिमाग को शांत करने और तनाव मुक्त करने का एक आदर्श तरीका है यात्रा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यात्रा बेहद जरूरी है, यानी यात्रा करने से ऐसे कौशल विकसित होते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं था। यात्रा करने से आपको नई भाषा, संस्कृति सीखने को भी मिलती है, यानी यात्रा आपको अच्छी कहानियां भी देते हैं और इससे सार्थक रिश्ते भी बनते हैं। और सबसे जरूरी बात, यात्रा करने से आपको अपने घर की याद बहुत ज्यादा आती है और अपने घर से ज्यादा लगाव हो जाता है। तो यात्रा कीजिए और अपने तनाव को टाटा बाय बाय कीजिए।

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgold@gmail.com।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रूपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया।

0: ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1,200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of 180 days from arrival in India. Previously, registration had to be completed within 14 days after the end of the 180 day period. However, late registration beyond this period will now be permitted only under emergent circumstances. The Chief Justice of India, Justice Suryakant, administered the oath of office to 5 new judges of the Supreme Court today. Justices Sheel Nagu, Sri Chandrasekhar, Sanjeev Sachdeva and Arun Valli and Senior Advocate V. Mohana took oath as judges of the Apex Court. The centre had cleared their appointments yesterday on the recommendation of the Supreme Court Collegium. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Deputy President of South Africa Paul Mashatile in New Delhi today. They discussed opportunities in trade, investments, MSMEs, digital and infrastructure domains. They also agreed on working closely in international forums. In a social media post, Dr. Jaishankar said he appreciates Paul Mashatile's strong commitment to deepening the long-standing partnership between the two countries. The anti-terrorism squad of Uttar Pradesh has arrested a young man named Mohammed Sheikh from Azamgarh, allegedly linked with Pakistani gangster Shahzad Bhatti. The ATS received information that Pakistan's ISI and terrorist organizations were collaborating with Bhatti with the aim of spreading terror and threatening India's sovereignty, unity and territorial integrity. Intelligence was collected about Mohammed Sheikh, who had connected with Shahzad Bhatti's terrorist gang via WhatsApp. The Central Board of Secondary Education CBSE portal for verification of issues in the supplied scanned copy of answer books and for

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज इस खूबसूरत फिल्मी सफर में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने दोस्ती, वर्ग, संघर्ष और इंसानी रिश्तों की नई परिभाषा लिखी है। एक ऐसी फिल्म जिसमें दो महान कलाकारों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं आज 1973 की एक कालजयी फिल्म की, जिसका रिलीज हुआ था 1973 में। निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी, निर्माता थे जयेंद्र पांड्या और संगीत आर डी बर्मन साहब के थे। और गीत जो लिखे थे खूबसूरत, जो आप सुनेंगे कुछ ही देर में, वो आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। अब इतनी सारी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, और ये भी बता दूं कि ये फिल्म दोस्ती और सामाजिक असमानता के विषय पर आधारित थी। उस दौर में जब मसाला फिल्मों का बोलबाला था, तब इस संवेदनशील कहानी और शानदार अभिनय के दम पर इस फिल्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। थोड़ा बहुत हिंट आपको हो ही गया होगा, बाकी जो है वो इस गीत को सुनने के बाद हो जाएगा। तो आप इस गीत को सुनिए और पहचानने के बाद हमेशा की तरह अपने जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है हमारा ip.radio@gmail.com। तो ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप मेरे हम सफर बन सकते हैं। तो फिलहाल सुनाती हूँ किशोरदा की आवाज में इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत आसानी से मिल जाते हैं संदेशों के जरिए। जी हाँ, प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके संदेश हमें एहसास दिला देते हैं कि आप हमारे करीब हैं। फिलहाल ढेर सारे संदेश पहुंच रहे हैं सही जवाब के साथ, और आपने पहचान ही लिया है कि आज हम आपके लिए लेकर आए 1973 की एक सुपरहिट फिल्म नमक हराम। ये फिल्म आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। दिए जलते हैं, अभी आपने जो गीत सुना, नदिया के से दरिया और मैं शायर बदनाम, ये सबसे यादगार गीत हैं जिन्हें किशोर दा ने दमदार तरीके से गाया था। और ये फिल्माए गए थे राजेश खन्ना साहब पर, जिन्होंने अपने भावपूर्ण अभिनय और चेहरे के भाव से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1973 की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म को तमिल में उनाकांगा नाम से रीमेक किया गया था। ये 1970 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे की जो कपड़ा मिल थी उसमें मुद्रा स्फीति की पृष्ठभूमि में श्रमिक संघ थे उनके उदय पर यह फिल्म केंद्रित थी। फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा, सिमी ग्रेवाल, अमिताभ बच्चन, इनके अलावा नजर आए थे असरानी, रजा मुराद, ए के हंगल, ओम शुक्री। हमने आपको बताया कि संगीत आर डी बर्मन साहब का था, पटकथा गुलजार साहब की लिखी हुई थी और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। राजेश खन्ना जो इस फिल्म में सोमनाथ चंद्र सिंह यानी कि सोमू के किरदार में नजर आए थे, बिक्की महाराज यानी कि बिक्की कौन हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, जी हाँ उन्होंने इस किरदार को निभाया था। रेखा श्यामा के किरदार में थी, सिमी ग्रेवाल मनीषा के किरदार में दिखाई दी थी, ए के हंगल बिपिन लाल पांडे के किरदार में दिखे थे, श्यामा के भाई धोनू के रूप में असरानी थे, मनमोहन ने जयसिंह के का किरदार प्ले किया था, दामोदर महाराज के रूप में ओम शुपरी थे, रजा मुराद आलम बने थे और जय श्री टी की भी एक बेहतरीन भूमिका थी इस फिल्म में। तो चलिए, इतनी सारी बात हम

1973 की सर्दियों में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम रिलीज हुई और ये उनके अब तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। अपनी दिल को छू लेने वाली कॉमेडी और सौम्य पारिवारिक ड्रामा फिल्मों के लिए मशहूर इस फिल्म में राजनीति, सत्ता और वर्ग संघर्ष जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना अभिनीत ये फिल्म उससे कहीं बढ़कर साबित हुई बॉलीवुड में आए बदलाव का एक प्रतीक के रूप में। आज इसे हम दो दिग्गजों के टकराव के रूप में भी याद कर सकते हैं, जिसमें उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना का सामना हुआ था उभरते सितारे अमिताभ बच्चन के साथ। जी हाँ, नमक हराम 9

1964 की हॉलीवुड क्लासिक बेकेट की कहानी पर आधारित है, जिसका मूल विचार था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का जो टकराव और ये संघर्ष किस प्रकार एक मित्रता, नैतिकता और मानवीय संबंधों को नष्ट करता है, ये सब बेकेट में दिखाया गया था। बेकेट में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल जैसे कलाकार थे। वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी खुद की दिग्गज जोड़ी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को कास्ट किया, जो आनंद फिल्म के बाद एक बार फिर साथ में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों की थी, सोमो यानी कि अमिताभ बच्चन और विक्रम यानी कि राजेश खन्ना। विक्रम एक अमीर उद्योगपति का बेटा है, जबकि सोमो उनका घनिष्ठ मित्र है। ये कहानी होनी थी, लेकिन बाद में इस कहानी में हेर फेर किया गया था और ऋषिकेश चाहते थे कि जो आनंद फिल्म में उन्होंने किया था इन दोनों कैरेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर उनके उनका जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा अलग दिखाया जाए। तो 1970 के दशक में जब मिल मालिकों और मजदूर संघों के बीच जो संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि पर इस फिल्म को बनाया गया, और ये फिल्म दो घनिष्ठ मित्रों की कहानी को भी बयां करती थी जो संघर्ष में एक दूसरे के विपरीत पक्षों में आ जाते हैं। राजेश खन्ना ने, हमने आपको बताया, सोमू का किरदार निभाया था, जो एक गरीब, विनम्र और आदर्शवादी व्यक्ति है, जबकि अमिताभ बच्चन ने बिक्की का किरदार निभाया था, जो एक मिल मालिक का रंगीन मिजाज बारिश है। मजदूरों के साथ झड़प में बिक्की के अहंकार को ठेस पहुंचती है। सोमू बदला लेने के लिए मिल के मजदूरों के रूप में उनके साथ काम करने लगता है, लेकिन जब वो मजदूरों के बीच रहकर देखता है तो उसकी जो सहानुभूति होती है वो बदल जाती है। प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट का चमचा करार दिए जाने पर सोमू की हत्या कर दी जाती है, और एक चौंकाने वाले मोड़ में बिक्की दोष अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। ये थी फिल्म की कहानी, लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स था, इसका जो अंत था, वो थोड़ा सा विवाद का विषय बन गया था। कैसे बना था वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो फिल्म थी, ये फिल्म एक कहा जाता है कि इसकी जो क्लाइमेक्स थी, इसकी शूटिंग के समय जब सेट जो था वो बहुत भावुक हो गया था, फिल्म का अंत इतना असरदार बनाया था कि जो यूनिट के सदस्य थे वो भी कुछ देर तक चुप खड़े रहे थे। तो यही तो कमाल था नमक हराम का, एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखाई थी बल्कि दिलों में दोस्ती और इंसानियत की भी गहरी छाप छोड़ी थी। आपने भी अगर इस फिल्म को देखा होगा तो आपने अंदाज लगाया होगा कि इस फिल्म में वो जादू था जिसकी कल्पना शायद उस वक्त नहीं की जा सकती थी, और ऋषिकेश दा ने वो करके दिखा दिया था। आपको सुनवाते हैं एक और किशोरदा की आवाज में इस फिल्म का गीत, और आपके ढेर सारे संदेश भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, और साथ ही इसका क्लाइमेक्स में किस तरीके से बदलाव किया गया वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल सुनिए इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, नमक हराम का जो क्लाइमेक्स था वो इसका विवाद का एक केंद्र बिंदु बन गया था। हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन ने 1972 में ही अपने सोलो सीन पूरे कर लिए थे, जबकि राजेश खन्ना कई फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए 1973 तक सब कुछ बदल चुका था। जंजीर के गुस्से वाले नौजवान की छवि को उजागर कर दिया था अमिताभ जी ने, और वो अब एक उभरते सितारे थे। अब वे अपने मुख्य दृश्यों की शूटिंग जब वो साथ में कर रहे थे, तो टकराव का जो केंद्र बिंदु था वो था इस फिल्म का क्लाइमेक्स। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नमक हराम की पूरी शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेताओं को क्लाइमेक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस क्लाइमेक्स के साथ उन्हें डर था कि कोई ना कोई विवाद ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ था। फिल्म के मूल क्लाइमेक्स के अनुसार बैकिच की जो कहानी थी, जो इसका ओरिजिनल फिल्म थी, उससे हटकर अमिताभ के किरदार की मृत्यु होनी थी। जब राजेश खन्ना साहब को इस बारे में पता चला तो वे खुश नहीं हुए। राजेश खन्ना को मरने वाले किरदारों से खास लगाव था, ये बात सभी जानते थे। उनका मानना था कि उनकी सबसे यादगार फिल्में वो थी जिनमें उन्होंने पर्दे पर अपनी मृत्यु का दृश्य प्रस्तुत किया था। नमक हराम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु का जो दृश्य है वो उन्हीं पर होना चाहिए। राजेश खन्ना साहब अड़ गए। ऋषिकेश से उन्होंने कहा कि बड़े स्टार होने के नाते तो जो मृत्यु वाला दृश्य है वो उन्हें मिलना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी उनसे बातें कही ऋषिकेश से, और साथ ही साथ अपनी तस्वीर पर फूलों की माला भी चढ़ा दी, ताकि जो भव्य फिल्मी मृत्यु हो उसकी मांग पूरी हो सके। ये ऋषिकेश मुखर्जी के लिए एक अंतिम संकेत भी था कि अगर आपने मुझे नहीं मारा तो शायद फिल्म में मैं अपना अपने आप को रोक भी सकता हूँ। खैर, उनकी बात मानी गई और राजेश खन्ना साहब को मृत्यु वाला दृश्य जो था वो मिल गया। नमक हराम फिल्म में गुलजार साहब ने बताया था कि इसका क्लाइमेक्स बदलना पड़ा, क्योंकि ऋषिकेश जो साहब थे उन्होंने राजेश खन्ना की मृत्यु वाली बात को मान लिया था उनकी जीत के बाद। अमिताभ बच्चन लेकिन इस फैसले से नाराज थे। राजेश खन्ना के कहने पर स्क्रिप्ट में बदलाव तो किया गया, लेकिन शूटिंग के दिन ये बात अमिताभ बच्चन जी से छुपा ली गई थी, और इस बात का उनको दुख हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है। और इसी बात पर कई दिनों तक, शायद इस फिल्म के बाद इन दोनों ही एक्टर ने साथ में कभी काम नहीं किया और साथ उनकी बात भी नहीं हुई। तो ये थी इस फिल्म का क्लाइमेक्स जो हम आपको बताना चाह रहे थे। और अब हमारे पास ढेर सारे आपके संदेश भी आ रहे हैं, लेकिन हमने आपको मैं शायद बदनाम इस गीत को थोड़ा सा रोक दिया था, तो आपकी इच्छा, आपकी बहुत सारे संदेश आ रहे हैं इस गीत को सुनने के लिए। एक बार फिर से थोड़ा सा सुनवाती हूँ, फिर आपके संदेश शामिल करूंगी।

वीरन गांव गुजरात से अजीत भाव सर प्रमीला परवीन सुल्ताना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह इन्होंने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। नीतीश कुमार तनुजा, ईशांत लखन जी पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं।

संदेश सुरेश यादव अनीता पैंठन से हमें भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं और डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमें सुन रहे हैं और इन्होंने हमें ये संदेश कहाँ से पहुँचाया है ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा है। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से इनके साथ कमल और गाव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह नीता साउथ एक्सटेंशन और शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जी हमें सुन रहे हैं। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली जी और ढेर सारे इनके दोस्त हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता गीता हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम समली नवापारा से मुकेश श्रद्धा अदिति राधे दीपक गुप्ता हैं। बचिंग खेड़ा पंजाब से मिंची टोमस पिंकी लवली आरती हैं। हीरा मणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से जुड़े हुए हैं। भूषण खेरा जी हमारे साथ विष्णु खेरा विशाल जी के साथ फालसिका पंजाब से जुड़े हुए हैं। राज रेडियो ग्रुप राजकोट से जैमिन कुमार जैन हैतल और राकेश जैन है। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम गंगनेजा जी हमारे साथ हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप लोहरगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से अनिल मोहन उषा मोहन चिल्लू नायक जी मधु नायक जी के साथ हमारे साथ हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस सोहानकर निर्मला विशाल सोपान मलकापुर से नारायण इंगले राजकुमार इंगले हमारे साथ हैं। और ये सहारनपुर से सैयद मसरून शाइना हसन नाजिया जी का हमारे पास संदेश पहुंचा है। मामूलीबाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताइडे वसंतराव बी एस नवानकर पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी का एक और संदेश है। प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस छत्तीसगढ़ पलारी से हैं और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज हिमांशु हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शेनवाज सरफराज फरदीन सोहान अरजान अवान परिवार के सभी सदस्य ऊपर कोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से हमें सुन रहे हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं। संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं। सीपीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं और राजू मिगलानी जी बबीता मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम अशफाक अफरीन जी हमारे साथ हैं। देव नारायण साहू योगिता गीतिका चंचल रानी उमाबाई हमें भोई नापार लाटापोर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं। संदीप मक्कर जी हैं चिरमिरिया को रासिया कार्डी सिंद्रवान अनुभव ऋषभ सिंह जी हमें सुन रहे हैं और उसके बाद बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिम्पल देवांगन है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी जी हमें सुन रहे हैं। तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हमारे हम सफर बनने के लिए। कुछ दो संदेश और हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ ये जुड़े हैं पंकज शर्मा जी प्रतिभा शर्मा जगमोहन जी के साथ में ये मॉडल टाउन करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश अनिल मोहन जी का एक बार फिर आया है। तो आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करते हैं हमारे साथ इस सफर में आप हमारे हम सफर बने हैं और आज की ये फिल्म उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों जब इम्तिहान दोस्ती जब इम्तिहान से गुजरती है तो रिश्तों की असली कीमत सामने आती है। नमक हराम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती इंसानियत और सामाजिक न्याय की एक भावनात्मक दास्तान है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने इसे हिंदी सिनेमा की अमर कृति बना दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो हमेशा की तरह कहेंगे कि वक्त निकाल कर जरूर देखिए। फिलहाल अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। परसों यानी कि 4 तारीख को फिर एक नई फिल्म के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। ब्रांडेस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण में खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिक्ख्या शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि व्यक्ति नूं आत्मनिर्भर, जागरूक ते समर्थ बनाउंदी है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता है, जिस तहत विदेशियों बारे नियमों च महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जजों नूं अहुदे दी सहुं चुकाई है। CBSE ने उत्तर पुस्तकावां च गलतियां की तस्दीक ते पुनर्मुलांकन लई अज पोर्टल शुरू कर दिता है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 4-8 जून तक अहमदाबाद में होगी। हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिक्ख्या शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर, जागरूक ते समर्थ बनाती है। अज नवी दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के आदिवासी लाभपात्रियों संबोधन करदे राष्ट्रपति ने कहा कि सच्चा विकास ता ही हासिल किया जा सकता है जदों समाज के सारे वर्ग समाजिक, आर्थिक ते विद्यक तौर से तरक्की करन। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम ने उच्च सिक्ख्या ते नवे मौकियां तक पहुंच नाल आदिवासियों के जीवन नूं बदल दिता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी विद्यार्थियों नूं अगे वधाउण लई यत्नशील है।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, इस वधन फूलन लई सही मंच प्रदान किए जाने की लोड़ है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे सोध नियम 2026 नूं नोटिफाई कर दिता है। इस विच इमीग्रेशन ते विदेशियों बारे नियम 2025 तहत रजिस्ट्रेशन की समा सीमा अते अपील विधि विच महत्वपूर्ण बदलाव किए गए ने। इस सोध तहत भारत विच पहुंचने तो बाद 180 दिनों की म्याद खत्म होने तो पहला किसी भी समय रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। पहला 180 दिनों की म्याद खत्म होने के 14 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन की लोड़ सी। इस समय तो बाद रजिस्ट्रेशन की सिर्फ हंगामी हालत ही मंजूरी दी जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नवी दिल्ली में दक्षिणी अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार, निवेश, छोटे ते दरमियाने उद्यमों, डिजिटल ते बुनियादी ढांचे के खेत्र में मौकों बारे चर्चा की है। डॉ जयशंकर ने आपसी भाईवाली मजबूत करने लिए श्री माशातेले की शलाघा की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोवें नेता इस गल से सहमत हुए कि भारत ते दक्षिणी अफ्रीका नूं अंतरराष्ट्रीय मंचां ते रल के काम करना चाहिए है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश में हालां तक इबोला वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। मंत्रालय ने सलाह दी है कि अजय व्यक्ति जो

नए जजेस को ओहदे का हलफ दिलाया है। जस्टिस शील नागो, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और सीनियर वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनके तकरूर की इजाजत दे दी थी। ये तकरूर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किए जाने के चंद हफ्ते बाद किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के पोर्टल पर आज से कामकाज शुरू हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेगा। ये पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। CBSE ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाए। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस रियासत के सिद्धी जिले में एक साल के अंदर अंदर 53 ऐसी माओं की अमवात की खबर पर जारी किया गया है जो जजगी से पहले या बाद में फौत हो गई। कमीशन ने मीडिया की एक रिपोर्ट पर अजखुद कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीलात तलब की है। कमीशन ने कहा कि अगर खबर का ये मवाद सच पर मबनी है तो इससे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का एक तशवीशनाक मामला सामने आता है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिन में इबोला से मुतासरा मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इत्तला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मैशटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, MSMEs, डिजिटल और बुनियादी ढांचों के शोबों में मौकों के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर शंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मैशटाइल के अजम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अलाक्वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। म्यांमार के सदर उ मिन ऑंग लाइंग भारत के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और

0: for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, administers oath of office to 5 new judges of Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West, Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, third and final T20 international between India and host England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटीले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके

0: व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमरीका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और

देशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:20 हो रहे हैं। और दोस्तों अब समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का, और आज इस कार्यक्रम को लेकर आज
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज, 684 किलोहर्ट्ज, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री KS शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत

0: मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।

0: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
1: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
0: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है,

0: मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
0: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो,
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन

0: प्रोडक्शन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना

0: अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा।
3: हाँ,
2: इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ,
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
5: आप,
6: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा
5: अच्छा,
6: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान

0: उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट इन सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: अभी तक आप एक स्पॉन्सर प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे NCERT। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रोग्राम उर्दू सर्विस रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

सर्विस है। सुबह के 3 बजे है हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

बजकर 5 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 बजे हम पेश करेंगे जनाब मालिक के अश्तर के तहरीर करदा फीचर गर्दिश में था आसमान का तारा का दूसरा और आखिरी हिस्सा। यह फीचर राजकपूर की शख्सियत और खिदमत के हवाले से है। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्म नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

से यू दूसरा बिस्किन शुरुआत। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें।

सुनिए, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026

0: सीबीएसई के पोर्टल पर आज से काम शुरू हो गया है जो 6 जून तक जारी रहेगा। यह पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। सीबीएसई ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। उन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने वालदेन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। सीबीएसई ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए किस तरह दरखास्त दी जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक एबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिनों में एबोला से मुतासर मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इतला मकामी सेहत हुक्काम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वह जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद की जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तजियाती मतबादल पर मुश्तमिल है। उन्होंने तवाज़ जाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफाजत सेहत की तैयारियों और इबोला के रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। साबिक मरकजी वजीर और हमीरपुर से रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्टों की तोसी, जदीदकारी और बिजलीकारी के लिए 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। कांगड़ा वैली रेल खिदमात दोबारा शुरू किए जाने के मौके पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम सबका यूपीए सरकार के दौरान मुख्तस की गई सबसे ज्यादा 104 करोड़ रुपये की रकम से तकरीबन 27 गुना ज्यादा है। अमेरिका की लोग एथलीट्स की एक टीम पहली आर्मी लोग आसन में चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की गरज से भारत आ रही है। ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक होगी। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मुकामी मैच आज रात इंग्लैंड में टोरंटो के मकाम पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की सामाजिक, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तजारत, सरमाकारी और स्ट्रेटेजिक तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। सेहत की वजारत ने कहा है कि भारत में इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मुकामी मैच आज रात टोरंटो में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी प्रदेश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदान।

आज के मेरे पसंद प्रोग्राम के नगमे हमने लिए हैं राज कपूर की फिल्मों से, जिनका आज यौम वफात है। राज कपूर जिन्हें हिंदुस्तानी सिनेमा का चार्ली शोमैन कहा जाता था और चार्ली चैपलिन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर थे, राज कपूर ने हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को अपनी फिल्मों के जरिए तमाम दुनिया में आम किया। एक जमाने तक वो रशियन हीरो के नाम से भी जाने जाते थे। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में हम उन्हीं की फिल्मों के कुछ नगमे आपकी नजर कर रहे हैं।

आशियाना और बेवफा, इन चारों ही फिल्मों की हीरोइन नरगिस थी। आजादी के बाद भारतीय सिनेमा में ये भी एक रिकॉर्ड है कि सन 51 से सन 56 तक राज कपूर की जितनी फिल्में आई उन सब में उनकी हीरोइन नरगिस ही थी। जिस तरह राज कपूर ने दिलीप कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म अंदाज में काम किया, उसी तरह अशोक कुमार के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बेवफा में काम किया, और अंदाज की तरह इस फिल्म की हीरोइन भी नरगिस ही थी।

आजकल पूरी की जिंदगी

चोरी की औसतन हर साल दो फिल्में आती रही। राज कपूर नहीं, भारतीय सिनेमा के किसी भी बड़े अदाकार की

1956 में नरगिस आखिरी मरतबा राज कपूर के साथ दो फिल्मों में नजर आई। एक फिल्म तो खुद राज कपूर की ही थी जिसका नाम था जागते रहो, दूसरी फिल्म अनंत ठाकुर की चोरी चोरी थी। इस तरह ये खूबसूरत जोड़ी बरसों साथ साथ नाजरीन के दिलों की धड़कनों पर राज करके

से फिल्म साजों की फिल्मों में भी काम करते रहे, जिनमें एलवी प्रसाद की शारदा, रमेश सहगल की फिर सुबह होगी, एस बनर्जी की परवरिश जैसी फिल्में शामिल है। 1959 में फिल्म अनाड़ी में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर नूतन ने काम किया था। फिल्म के गीतों ने भी काफी मकबूलियत हासिल की। मुकेश की आवाज में इस फिल्म का एक गीत तो

0: 1960 में राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है मंजर आम पर आई। इस फिल्म से नाजरीन और खुद राज कपूर को बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म में राज कपूर के अलावा प्राण और पद्मिनी ने अदाकारी की। ये फिल्म एक प्यारी से मोहब्बत की दास्तान और बहुत गहरे समाजी पैगाम से भरपूर थी।
1: एक देश है इस दुनिया में जहाँ दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे को माफी दे दे भाई, जहाँ खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी दया की जो मेरा चौका पवित्र किया, जहाँ एक पापी और हत्यारा अपने पाप से पलटता है तो रामायण शरी का ग्रंथ लिखता और इसी बाल्मीकि कहलाता है। ताऊ जी, इस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती
0: है। इस फिल्म ने राज कपूर की फिल्मी जिंदगी में एक नई उमंग पैदा की। फिल्म ने कमाई तो की ही, उसको बहुत से एजाजात भी मिले।

0: इस कपूर ने फिल्म में एक सादा लव और प्यारे से नौजवान का किरदार बहुत खूबी से निभाया था।
1: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं।

से सन 63 तक चार फिल्मों में बतौर अदाकार आए। इन फिल्मों में श्रीधर की नजराना, ऋषिकेश मुखर्जी की आशिक, प्यारे लाल संतोषी की दिल ही तो है और आसी तलवार की एक दिल सौ अफसाने शामिल हैं। सन 1964 में राज कपूर ने संगम फिल्म बनाई, जिसमें उनके साथ बतौर अदाकारा विजयंती माला ने काम किया। इस फिल्म में साइड रोल के लिए राज कपूर ने दिलीप कुमार से कहा तो उन्होंने राज कपूर वाला किरदार खुद के लिए मांगा, जिस पर राज कपूर राजी न हुए और दिलीप की जगह राजेंद्र कुमार को लिया गया। इस फिल्म ने अच्छी मकबूलियत हासिल की और उसकी मौसीकी की भी खूब तारीफ हुई।

कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म पर राजकपूर ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा रखा था। फिल्म में अदाकारों की एक पूरी फौज थी जिसमें राजकपूर खुद और फिर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर जैसे लोग शामिल थे। फिल्म का मरकजी ख्याल भी बहुत

मेरा नाम जोकर की नाकामी ने राज कपूर को बुरी तरह से तोड़ दिया। माली एतबार से उनकी हालत खस्ता हो गई, कर्ज का दबाव था। उन्होंने फिल्म कल आज और कल बनाई जिसमें पूरे कपूर खानदान ने काम किया, लेकिन ये तजुर्बा भी राज कपूर

1973 में फिल्मा हुआ। इस करिश्मे का नाम था बॉबी। ये फिल्म राज कपूर को फिर से शोहरत के आसमान तक ले गई। इस फिल्म में राज कपूर ने एक नया तजर्बा किया। नौ उम्रों की चाहत पर मबनी फिल्म में राज कपूर के नौखेज बेटे ऋषि कपूर और कमसिन हीरोइन डिंपल कपाडिया ने काम किया था। डिंपल कपाडिया की पहली फिल्म थी और फिल्म में आते ही धूम मचाकर रख दी।

शिवम सुंदरम, बीवी ओ बीवी और प्रेम रोग फिल्में राज कपूर ने बनाई, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली जैसी इससे पहले देखी गई। सन 1958 में राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की बनाई हुई आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म ने भी काफी कमाई की और बॉबी जैसा नाम कमाया।

0: दूसरा पहलू है आजाद भारत के समाजी मसाइल। उनकी फिल्मों में बहुत बुनियादी सवाल उठाने की भी कोशिश की गई, जो तख भी थे और हमको दावत फिक्र भी अदा करते थे।
1: शेर तुम्हें कथा कब जाते, क्या तुम्हें इसका डर नहीं लगा? डर तो था शेर सिंह जी, मगर दुनिया में एक चीज शेर बाबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और वो है गरीबी और भूख। मुझे किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए था अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए, अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए।
0: राज कपूर ने अपनी फिल्मी जिंदगी में बहुत से एजाजात हासिल किए। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के तो दिया ही गया, इसके अलावा उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण से भी सरफराज किया। राज कपूर को उनकी फिल्मों के लिए 2 कौमी फिल्मी एजाजात और 11 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। उनकी फिल्म आवारा को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों की दर्जाबंदी में शामिल किया गया। शोमैन के नाम से मशहूर इस अजीम शख्सियत को इसके अलावा भी बहुत सारे एजाजात मिले। अपनी अदाकारी और फिल्मों से हमारे जहनों को झंझोड़ने और दिलों को छूने वाला ये इंसान 2 जून को दिल्ली में चल बसे।

फीचर गर्दिश में था आसमान का तारा। पेशकश अली मुतशिमदला की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुना रहे हैं कुछ फिल्मी गजलें। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं पालकी फिल्म की इस गजल के साथ। आवाज मोहम्मद रफी की है, मौसीकार है नौशाद।

खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के अवकात और अपील से मुतालिक निजाम में अहम तब्दीलियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मुबैना रबते की बिना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट

मोबाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, एमएसएमईज, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के शोबों में दस्तयाब मौके के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मेशेटाइल के अज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अल-अक़वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। उमूरे दाखिला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों मजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीकाकार में भी तब्दीली की गई है। मजकूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में इंसान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफाजत सेहत की तैयारियों और इबोला की रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़िश्ता 21 दिनों में इबोला से मुतासर मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इतला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही है। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मुबैना रबते के सिलसिले में आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। एटीएस को इतला मिली थी कि पाकिस्तान की आईएसआई और दहशतगर्द तंजीमें दहशत फैलाने और भारत के इख्तदार आला, इतिहाद और इलाकाई सालमियत को जख्म पहुंचाने के मकसद से भट्टी के साथ मिलकर साजिश कर रही है। भट्टी के दहशतगर्दी के नेटवर्क के जरिए वो भारतीय नौजवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तवसुत से पैसों का लालच देकर और स्लीपर सेल के तौर पर काम करने की गरज से उन्हें इंतहा पसंद बनाकर भर्ती कर रही है। आजमगढ़ के मोहम्मद शेख के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा की गई जिसके शहजाद भट्टी के दहशतगर्द गैंग के साथ व्हाट्सएप के जरिए रवाबित थे। शहजाद भट्टी गैंग के आकाओं ने मोहम्मद शेख को देगर रियासत की एक सियासी पार्टी की खातून लीडर को धमकाने और कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। शेख मकामी नौजवानों को शहजाद भट्टी के गैंग में शामिल होने की भी तरकीब दे रहा था। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट ने मुंबई के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग के एक नेटवर्क का पता लगाया और 2 किलो 600 ग्राम सोना जब्त कर लिया जिसकी मालियत तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख रुपए है। खुसूसी इतला मिलने के बाद DRI के अहदेदारों ने कल 2 मुसाफिरों को उस वक्त हिरासत में लिया जब वो गैर कानूनी तरीके से दुबई से भारत सोना लाने की कोशिश कर रहे थे। लेबोरेटरी में जांच से इस बात की तस्दीक हुई है कि यह सोना 24 कैरेट का है। सोने को कस्टम्स कानून के तहत जब्त किया गया है। साबिक मरकजी वजीर और हमीरपुर से रुकने पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि मरकजी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्टों की तौसी, जदीदकारी और बिजलीकारी के लिए साल 2026-27 में 2,911 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। कांगड़ा वैली रेल खिदमत दोबारा शुरू किए जाने के मौके पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर इशारे ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम सबका यूपीए सरकार के दौरान मुख्तस की गई सबसे ज्यादा 104 करोड़।

0: 27 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मौजूदा सरकार ने गुज़श्ता 12 बरस में रियासत में रेलवे के शोबे में बेमिसाल तरक्याती काम किए हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान अमरीकी सालिसी वाली जनबंदी के बाद लबनान पर तवज्जो बरकरार है। इस जनबंदी से खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार पैदा हुए हैं, अगरचे ताता के तशद्दुद की वजह से इन उम्मीदों के जारी रहने पर शक पैदा हो गया है। लबनान के अफसरान ने बताया कि हिजबुल्ला ने एक अमरीकी तजवीज को मान लिया है, जिसके तहत ये ग्रुप इसराइल पर हमले रोक देगा, जबकि इसराइल बैरूत के जनूबी निवाह पर हमलों को मुअत्तल कर देगा, जो हिजबुल्ला का गढ़ है। अमरीका की योग एथलीट्स की एक टीम पहली आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की गरज से भारत आ रही है। ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक मुनाकिद होगी। अमेरिका की योग आसन स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अमेरिका की योग एसोसिएशन और आलमी योग आसन के इश्तराक से इस चैंपियनशिप के लिए अमेरिकी टीम का ऐलान किया है। अमेरिका के वफाकी तफ्तीशकारों ने मैक्सिको से लेकर जनूबी कैलिफोर्निया तक बनाई गई जदीद तर्ज की एक जेर जमीन सुरंग का पता लगाया है और 1 टन से ज्यादा कोकेन जब्त की है, जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ डॉलर है। 4 महीने की छानबीन के बाद 4 अपराध पर इल्जाम आयद किए गए हैं, जिससे स्मगलिंग के एक रास्ते का पर्दाफाश हुआ है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साइली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मुबैना रबते की बिना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साइली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अख्ताम पजीर होती है। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते।

तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो।

यानी जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुठलाया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं।

0: Miri mi wikadiu a ka shvani kargilin. Waqs po fitoghi tu sot ghanan fitsan suk kasata programmer de luksi xagomien mazad.
1: Assalamu alaikum Jule ngati radio kargil yan kan kula nga Abbas Kalandar a yanti dunu ko diring ngar deluk se program yang ngates diring first aid bar yang zashik ngata ngozin du chamma na zarin che zabana first aid po masan ga chuk se ngata emergency situation chano emergency halat chano ngata first aid she solution po mana zarin chana dyun ngata chi bachin zar kan po hospital la le bachi bachin zar chas po mana zarin che zabana golden minute zare de goma waqt pe ka खुआ सही जानकारी का तो यो थे यदि का एहतियात बस का इलाज बस है ना का तो गाड़ी चा एम्बुलेंस चा खो जगह ची का हेल्थ सेंटर ची का लेब ना का तो खुआ काफी स्ट्रो खतरा चा चा सा ना बने कि स्ट्रोंग सोल्यूशन नतेज देना जख्म ही इलाज पहुंचो बचिंदे का नतेज शुरू बेत पर ना जख्म घर गंदा सोंसो इतना क्योंकि बुलिक साफ बचस पर जरूरी मंगमुख शख्स जरे नो ना शख पो चिंचाओ खतरा ही नहीं रहा चीज बना तो पूरा बुलेट पर बन बसे थे कि ना थोड़ी लखपा का मागा का बन बसे ना ए पार्ट पो स्कैंस पे खतरा है ना शख गिर चिक तो मले बालू ना इसका मशीन सब बस सही तरीका तो इनकी टिंचर चिक लखमो बंडे चिक का कॉटन चिक का टिंचर तां से यान ना सेटलाइज उत्खन से चले जख्म पब्लिक साफ बसे छुई का साफ बसे या छुई ने साबुन का साफ बसे ना प्रेशर बंडेज दे रहे थे का मोटा बसे बंडे चिक दानुक टिंचर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दर्शन सप्पयंतिसुपिंग मीडिया में भी कदि आकाशवाणी करगिल इन वक्सपोनाता फिदा हुसैन मोहम्मद साकना मजद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है।

ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंग मिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेन उन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब लेपी स्कप्स मांगमु दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनिका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001 4242 पर
3: 8700

0: शून्य शून्य शून्य एक चार दो चार दो।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
3: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: टमाटर तब चची दूसरा शिमला मिर्ची
1: तीसरा
0: ना खीरा दी संग दी तो क्रॉप सुम का ना दी ला फुलुंग जुगिनो या रास्ता नि ना ता जगह ने ना दी क्रॉप पुंग ता लदा ग्रीन हाउस ना जी ना तिस बियर वक्स ना ने गेला छ देले दे छ छिंग पो तक संग ता खीरा जिसे जुगुन ला टमाटर न जुगुन इसका शिमला मिर्ची इसका ना तिस पोचेस खीरा ना तिस डायरेक्ट सोइंग सोइंग बना ज्यादा तर ना ता सक्सेस छ छिन ले डायरेक्ट ना तिस सोन तप छस सोन तप से टिंग ना ने दे का ना ता छ छ छिन ले जुगुन इसका तप से स्पोसेस टिंग ना खुंगाता एक फुट छ छिंग बो खीरा लोमा जियो मा छिंग बो खीरा यों छिन ते तंगो मा ता खीरे स्कोला छ
1: ता ने
0: वो मा ते खीरा खीरा तपना का तो ग्रीन हाउस आता तब छस खीरा खोरा पुआता सोन मेट खाने खीरा कोन छ जे ना सोन मेट खाने खीरा दक्षा डिपार्टमेंट ने सं सब्सिडाइज बेसिस का ता दो मा ता छि पछिन जे ना ति सोन उत खाने खीरा बा सं सोन मेट खाने खीरा आता 10 15 गुना आता ज्यादा खुर्चिन
1: जे
0: जे ना आता छि डिफरेंस का छ पता छ छिन जे ना सोन उत खाने मेट खाने nga ti son met khani khire na chi un chenda har mendo ga ta fruit khurchin
1: acha ka
0: khira chakshin
1: ya ya ya
0: lekin nga ta au ga nga te son yot kan pan chi chachin mendo chi chakshin chachin pura o mama na pura chi khira mana pura 1 meter su pa chacha su pa mendo chakshin chakshin chen che no bo to male flower ma male flower yon chi gen bo de ka khira chakshin men de nga ti minus khira chaks pe no zen chi ga dan bat de fe de na yang ate de greenhouse ang ate son yot khani khira ta ma chi gen bo tong za yon chazar ri chat che na pollination लेकिन दिस सोन मेट खाने खीरा ना था पोलिनेशन यहाँ तोंजे यहाँ जरूरत चाचा में पोलिनेशन यहाँ प्रॉब्लम चाचा में हर एक जो मेंढो होता है वो फीमेल होता है फीमेल होने हर मेंढो को मसा हर मेंढो का ना था खीरा खुशी नहीं
1: तेरे
0: जैसे ना था सोन मेट खाने खीरा ना था 10-15 गुना सोन उत्तम बसंत ज्यादा ना था योंगो होने यार खीरे यील पकड़ा देख यहाँ तेज वमा दा एक फुट छु पछा छु 4 5 लिवे ओ चिंगे बुंगा ते ओदे खीरान ला थपत अजुक तंस स्कुत पा तंस खतो तंस खीरान छु छस अगर का तुमा ते खीरा दा सोला पुते बोरना का तो एक एक खीरा कोरा 3 4 मीटर छ दे सोला चनंगा ते ग्रीन हाउस आ 5 6 खीरे तना ग्रीन हाउस पकोरा गांस छ
1: गांस छ
0: दे फेंगा ता जरूरी छ जन खीरे गा ता खीरे जुक पतन छ ठीक छ जरूरी ने ठीक तंस तीन ना गा ते ओदे टाइम गा छ लेकिन आ ते खीरा छ ओ छ छु से दो पूरा छ छु से तीन ना ठीक तना गा तो खीरा छ छ दे ले दे फे एग्जैक्ट स्टेज पंगा ते नाम खीरे खीरा ठीक तंग मर गोशिन ना चार लीफ सों से तीन ना एक फुट
1: तो शिफ्ट
0: हो चाहिए ना बुंगाते पटक पिका चाप स्टेम बिका गाते सुकुट पाचा चिंग से तीन ना खातो गाते तांसे ठीक ना चुचे साले और तो तांसे चुचे देश तीन ना गाता ने देश तीन ना खोज चेंच चेंच गाते जब तांग चुचे चेस ना खोज चेंच चेंच ना क्लाइम चाचिं दे क्लाइम चाचन को देजम शिक खीरे इस उप मियों मध्य ले को बुधान चाच गाते एक बार चोस ने मिंदु चस जब तांग गाता चाच जब तांग गाता ग्रीन हाउस दस दस मिनट गाता ग्रीन हाउस तांसे जरूरी है ले देर चितांग चेंग बुजां बुतो ने आंचो तांसे हला तांसे ना गाता ची छ जिंदने खीरा खुरर तिना दी सोन मेट खाने खीरा इन हगा सने ओदन खीरा सोन मेट खाने खीरा खुरर तिना का तोगा ता चप जु को खे साइज एग्जैक्ट स्ट्रेच स्ट्रेच यु मगा का गाते चादिन आति मेनु छो छ छ जिन जि बोर दे दे छ खो चप छो छ छ जु बोरा छिंगे बो खे जा छ क्वालिटी खोरंग जिक छ खीरे क्वालिटी मतलब जिम बो मियो तो या स्क्यूर मेक तो सिगु छ या सब सब चीज तो सिगु छ दे फेंगा ता खीरा चप खोंगा ता खुरर तिना कोई जुक साइज पर खोरंग आता है जिन 40 ग्राम चा 30 ग्राम या 20 ग्राम का स्टेज का आता चा पुचा हर दो दिन आते हर जुक पुतिन दो चा किरा जाम शिक आते किरा तो गन बोर पुतिन बोर दे जाम शिक को ज्यादा यो मत
1: कसन
0: कसन आता कोई न्यूट्रिएंट समा का कन्वर्ट छते छ छिंग बो दे किरे मेन एडवांटेज बे दना किंग आता हर दो दिन को पुतिन बोशस
1: इले
0: का नयन खु किरा यो नयो नयो छ देले दे ओ तो इम जुक चीज जरूरी होते है ई स्टेशन आ किरा आते मुल ला बोना का तो स्क्यूर मो छ दे किरा ने आता दी किरे आता कवर मंग यम बो जानो
1: नो नो नो
0: दे फे वेस्ट इज ज्यादा चंग मिछत पहले दी किरे खु जो ना
1: marchez donc je m'en arrête moi mon pinki des is bien voir si was bien on attend face ça realtan yul bien on des la dakh green house agar chu sang te jak tuk samna dunya dung ata chin yut kan sun ma gavne nu na pagam na shimla mirish ya khira tsun ya din nu ata yala zuste ka chachin zeli rakhis mo linut pinki ya den nu ko rakhis sai bai kan du tip problems bit ki is very was bien chat bi ki mo so ma pa ya ngata ngade nu temperature po namoza ki mo chachaz basse यदेंग तो चुना नत नदुना तब कनिस्टिन मुनि यगा चुगत एलाशी बचिन जुगा चुगा चुग नद्रिंग तो यों म्यूजिक्स मोलस पदिस बेरे वक्त
0: कस जु देनेंग त तक्सा खिरे इजुगुना चोस पसंद तक्सा त एक टेम एवज बेर मक्सा नजर अंज स्किंग अति ओलादा ग्रीन हाउस ना छत पो ज्यादा छत जरी नो गोमा गोमा स्टेज पो गा जेन त तक्सा गोमा अंज स्की को शेड नेट तंसा एले जरूरी शेड नेट पो तंसा शेड नेट मता नका तुंगा तं छी छिन जेना का तो खिरा खिरा देजम छी प्रॉब्लम छ लेकिन टमाटर लमेन तो या सेटिंग नंग जुक मिखुर बात फ्रूट मिखुर बात जैसे बना जब टमाटर लव 45 से एबो डिग्री का टेम्परेचर चार्जिंग है वो खुद फ्रूट सेटिंग

0: तो डेट ऑफ
1: पटेटो
0: फ्राइज हो जैसे
1: फ्राइज
0: फ्राइज
1: इन
0: इन
1: द
0: दे
1: ओके
0: फ्राइज मन आते हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर। जिस मन आते पटेटो आते फ्राइज ऑन दो हम पूरा ऑयल है वो देखा टेम्परेचर को आता छिंदु 125 से एबो छजन 130 एबो डिग्री सेंटीग्रेड तक आते दो फ्राई बसन सो वो तो छजन एबो पटेटो ना एक केमिकल्स बिंग मत दो आता कार्सिनोजेनिक बात वो दो कार्सिन मतलब वो उससे
1: बिल्कुल
0: कैंसर
1: बिल्कुल
0: होता है। देखिए हाँ था फ्राइड चीज़ रहे मेरा देखिए हाँ था पटेटो सब से हाँ था बॉयल चूस जाना बेस बॉयल बस हम बेक चूस जाते बेक जैसे कि हाँ था हाँ लगाती है था पौड़ी तो से जमीन ऊपर
1: देना गास टीचर
0: तो
1: जी ने
0: बेस्ट सबसे बेस्ट हाँ था पटेटो कंज्यूम चीज़ नानी देखा था इंटरनेशनल ले जुक्सी ट्रेनिंग जैसे जैसे मौके तो वाले
1: बख्शिश
0: और देना हाँ जिन चुकी मतलब पटेटो हाँ थे जाना का तो बेक सबसे ज्यादा हाँ था पटेटो कंज्यूम चूचा से फर्स्ट तरीका बेक चूस जाता हाँ था
1: बिल्कुल
0: सेकेंड तरीका हाँ था बॉयल चूस जैसे फ्राइड मतलब लीस्ट है कि फ्राइड को हमें इंक्लूड
1: बेशक
0: करना ही नहीं
1: बेशक
0: करना है चलो वंस इन ए मंथ ठीक है हेलो डेली माता फ्राइड चूस
1: कर
0: पटेटो आती
1: सकता
0: हेल्थी पे बिल्कुल अच्छा मैंने जो याले दो जरूरी अच्छा चीज है दे दे फिर आता पटेटो जो चूस दो नहीं बो चिक दस इधर आता जो सैलेट है सैलेट इंक्लूड चूस
1: कर सक
0: जरूरी आता प्रोटीन बो आते मीट खाची मीट जा खाना तो ठीक है हमें
1: बख्शीश कर
0: प्रोटीन
1: सक
0: ज्यादातर मीट से मिलता है
1: ओना ओना
0: अगर मीट मजा खाने लगा था सबसे चीज को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नंग आती जो रोशन आता मिनरल्स ना
1: मिनरल
0: विटामिन
1: संग
0: रोस
1: कर सकते
0: कार्बोहाइड्रेट का था बातें करना तो आते
1: थोड़ा
0: मतलब ज्यादा से उससे आती
1: ओना
0: डेली रिकमेंड से आते 100
1: बिल्कुल
0: ग्राम जो जरूरत तो सर आते समझ में जा
1: मामूज स्टार्ट
0: बाकी 5000 आते जो आते डेली
1: ओना ओना
0: हगवाले इंटर जो
1: बिल्कुल
0: आते ताकि 5000
1: ओना
0: बातों 5000 दिन इसके आना था कार्बोहाइड्रेट थोप सुन सो
1: कार्बोन
0: दो
1: थोप
0: आता है रिकमेंडेशन से ज्यादा खाते हैं हम सवाले
1: बिल्कुल
0: लेकिन आता मेन प्रॉब्लम पुंगाती इलायची छेज नाता दी मिनरल्स बना वाइटन पुंगाता में थोप दो आते आता चिकन थोप चिन फ्रूट ना वेजिटेबल ना दो आते कम जात आते
1: बिल्कुल
0: जक्षिक थोप पना मून लाजो स्थाय
1: सुनो
0: माथो
1: कैसा
0: बचेंगे पुंगाता कंप्लीटली
1: चपास
0: जिम्मेदार
1: है
0: है
1: कैसा
0: और दे
1: होना
0: फिर आता वेजिटेबल आता या सैलेड लाजा चेस चिक दूसरा आते फ्रूट उन जाचेस फ्रूट उन फ्रूट दोनचेस फ्रूट ना वेजिटेबल पुंगिस का आती जरूरत की फ्रूट ना वेजिटेबल पुंगिस का आता जर में कनाज गच्छन जरूरत आता जिंदा रहने के लिए आते बातों ना चावल से
1: ओ कैसा
0: प्रोटीन थोप चेस आते मीट से थे
1: मिर्ज है
0: लेकिन आता जर्मो में चेसी मेन मकसद फ्रूट ना वेजिटेबल है
1: ना ना कैसा
0: गा
1: बात
0: कना आता मिनरल्स ना विटामिन थोपित
1: बख्शीश
0: ओदों आता थोप चेसी फिर आता एक फ्रूट पुंगाते जाचेस दूसरा आते गाजर बीट रूट नंग कोरिएंडर नंग चिली नंग कच्चा द दोनचेस दो जरूरी नहीं ले
1: बख्शीश
0: कसा
1: बख्शीश डॉक्टर मार दे मोमल यो पिंकी अता सेहत पाला सेहत इलाज पने अंबो अंबो देना अति सेहत के छिन खनि सुन मांग अता कोल बिल जोक सुन डॉक्टर मोमल यो पिंकी न तो जोक शिका अति अतापे नमजे न दुन खनि प्रैक्टिस से फेस सन दे अलुन अति सो से मेन माया दुन अति से थाबु ने तंग से हाजु
0: कसा
1: अति से सो शु से
0: ओस
1: अति जे नक शो छन दुन
0: कसा
1: अता मन रिया लाइन सु की या दी सो से प्रैक्टिस न अति मिसे अति बिन जुक्स पर गोशा और नाम अति या ngate zanchi ngate zuk samna ka to minerals protein sagi ngate snanga jase balance diet sing ngate len me pralus bacha
0: कसा
1: bakshi doctor tangati spede ton putpin ngate seasonal dare ngate se benut khani practice ya ta vegetable ga chuk jik jik ngati sasun yang tapcha jin ya ngati solar ne chi chi rik chenu ze khani ngate se yeri gane tin pin bakshi se doctor sa ba this is the peak season pe anu ngata june july enuk yang ata temperature yang high song ma pasana yang ati solar yang tap chazin ya cha se nu ata gedin ut kan ata sakyat pala di bu signa di stin na natun yong mi da sa si di season in ju chana
0: कसा
1: dul la dare ngata ngati la da khiz khere na dare ngata organic declare song pasana chemical ngata free song sin khan ju
0: कसा
1: doctor saiba chana ga chuk jok shika ya organic tarike ka ya natural farming jok shika ngatis di anu ko busigun mitap chipiming na या लोकल प्रैक्टिस शिक्षा तो शिबें जुक्स पर गोशा दिन बाकी से
0: कसा लेता दक्षिण आता जिस साला जो कि नचना आती सोनमा दक्षिण आता एक तरह आता जिस सोन्दीचिक सीजन पर जो शियों साला ले मतलब ढंग
1: ग्रामो
0: में की
1: तो
0: तोशी
1: शिक्षा
0: भी हो
1: सा
0: सकता
1: ओना
0: सर
1: ओना
0: संगमा हर जगह संगमा जिंदगी अच्छी सोनमा उसके चमे उसे जरूरत
1: ओना ओना
0: पाले
1: बिल्कुल
0: हर जगह देना है जुक पोदुक लेकिन आता दक्षा ता दक्षा आता जुक पोछा चिंगे वो टेम जुक पो टेम्परेचर पंगा ता जुक मचाए नहीं ले दक्षा सात पोकर देमा मायो
1: बास्केट
0: माइन
1: पेन
0: मस्केट
1: कसो
0: पहन ले लेकिन दक्षा दक्षा शुरू ता जो ते आता टेम्परेचर पो दक्षा
1: ओना
0: थोंग
1: ओना
0: दुखा
1: ओना
0: ले ता
1: बख्शीश
0: कुले कुले आती ग्रोथ पे उचा सीन ले दो नेगा पो आते दक्षा चप आता टेम्परेचर पोचा सिंह आता और सात पोचा भी युवा चिंगे कौन खाची जगह जगह तब से आता 15-20 दिन ने महीना छिंदू याले
1: बख्शीश
0: ता
1: बख्शीश
0: दो ने कहा ची बचा जाना हो जुक्शी बचा जा भी कहा होलचा साउंड हो ले तीन ना आते वर्मी कंपोशिक चोक्षिक तांसे ना तांसे
1: बख्शीश
0: से तांसे जाले देखा ना
1: कैसा
0: आते शु तांसे तक सा फर्स्ट प्रैक्टिस पो और ना चुचेस अगर का तो सूज आते जीवा अमृत चुन योजना का तो ngates hol goma sabi ki hol wedding bo zo bon ston theni na ngate hol bari ba setina ngate jiwa amritan ses ya hol estina chuta setina jiwa amritan ngata gela isu ki effective cha chen chena jiwa amrit potan chuta chinga bo khoi nitrogen police out cha chenale bu

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: rangi business un laske tangmi fia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائیں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जबकि आकाशवाणी शोबे खबर की तरफ से भी डॉक्टर विमल की हौसला अफजाई की गई। एम्बुलेंस गाड़ी को तिबी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएं, नीज एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तिबी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: जरूरी है एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहां से भी चले, चाहे वह साइन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड में एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक वीआईपी मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत इजी बनाई जाए।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को नशा की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनुष्यात मुखालिफ सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं। एक तरफ मनुष्यात से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रग स्मगलरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी कार्रवाइयां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनुष्यात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअजम हैं। अभियान की शुरूआत के मौके पर उन्होंने मनुष्यात के खिलाफ एक वाज़ह पैगाम में कहा,
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस दौरान रवा महीने की 5 तारीख को गांधरबल में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा का एहतमाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजरों, मजहबी स्कॉलरों और आम शहरियों के अलावा जिंदगी के दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्के है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके पद यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मनुष्यात के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। पुलिस की तरफ से आज गांधरबल जिले में 2 मनुष्यात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ओमपुरा बड़गाम में NDPS एक्ट के तहत करीब 20 लाख रुपए मालियत का एक मकान कुर्क किया गया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलवामा जिले के कुछ इलाकों में वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आज गैर कानूनी तौर से काश्त की गई खशखाश की फसल और भंग को तबाह किया गया। अनंतनाग जिले में पुलिस की तरफ से मनुष्यात मुखालिफ जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस दौरान मैदनियात की गैर कानूनी निकासी में इस्तेमाल होने वाली 15 गाड़ियों को सीज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि NC अवामी मफादात पर कभी कोई समझौता नहीं कर सकती। श्रीनगर के बाशी दरवाजा मखदूम साहब में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी जमात है जो हर सतह पर लोगों के मसाइल हल करने और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने जम्मू में आज तंजीमी नवीयत की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार के 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी बहबूदी को उजागर करेगी। पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने चर्च लाइन श्रीनगर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला सतह के एक तरबियती कैंप की सदारत की। पार्टी के किसान मोर्चे की तरफ से मोदी सरकार के 12 साल के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावारिया ने कहा कि मोदी सरकार के किसान दोस्त इकदाम से काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हुआ है। पार्टी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कच्ची छावनी जम्मू में खवातीन के मसाइल की समाअत का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें मकामी खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कैदियों के मामलों का जायजा लें। एक बयान में उन्होंने मासूम अफराद की रिहाई यकीनी बनाने की अपील की है। वादी में आज बुलंद मर्तबत वली कामिल हजरत सैयद हमीद शाह बगदादी रहमतुल्लाह का उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जिला इंतजामिया श्रीनगर से अपील की है कि खलीफे सोम सैयदना हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के योम शहादत के सिलसिले में 4 जून को दरगाह हजरत बल में अकीदतमंद

0: जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड, गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था मुमकिन है वो न बच सकती, लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं।
1: जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले असाज़ा बिरादरी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से काफी तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कहा है कि इस मरहले पर टीईटी मुनाकिद करने से असाज़ा के मफादात को जख्म पहुंच सकती है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल जो तब थी जो गवर्नमेंट थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई अपॉइंटमेंट हो गई टीचर्स की, तो उनको अब टीईटी से क्यों गुजारा जा रहा है।
1: इस मामले पर स्टेट अवार्ड याफ्ता एक सीनियर उस्ताद जावेद जवाद ने कहा,
3: इसमें जो मजबूत पहलू मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि अगर हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, हम इस वक्त 21st सेंचुरी में हैं, तो इसमें हमें क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जरूरी है कि क्वालिटी टीचर्स हों। टेट के जरिए उनकी जो टीचर्स की है उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है या उनकी जो बेसिक नॉलेज है उसमें इजाफा हो सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसी तरह दूसरी बात जो इसमें आती है वो ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास इस वक्त हैं तो इनका एनकाउंटर करने के लिए इसके टीचर इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अगर
1: भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जज साहबान को ओहदे का हलफ दिलाया। मौसम, महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:20 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:38 पर होगा। इसके साथ ही एक खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
4: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समाप्त करें तबसिरा।
5: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। खेत बचाओ अभियान कल यानी 1 जून से शुरू हो गया है जो पूरा एक महीना चलेगा। इस दौरान खादों के मुतवाजन इस्तेमाल, मिट्टी की जरखेजी और पायदार काश्तकारी को फरोग देने के लिए पंचायती सतह पर कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। वजारत ज़रई तहकीक और तालीम के तहत कायम ज़रई तहकीक की हिंदुस्तानी कौंसिल ने मुल्कगीर खेत बचाओ अभियान के तहत नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं जिसकी बुनियादी तवज्जो मिट्टी की सेहत, खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत पर मरकूज है। किसानों और मुतल्लिका शराकतदारों को गजाई अज्जा के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में आगाह करने के लिए खेत बचाओ अभियान ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए मुल्क भर में एक मजबूत रसाई कायम की है। इस अभियान के तहत बेदारी कैंप और सेमिनारों के जरिए किसानों को बराए रास्त शामिल किया जाएगा। निचली सतह पर अवामी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए पंचायती सतह पर जन प्रतिनिधि सम्मेलन मुनअक्द किए जाएंगे। ये मुहिम मुल्क भर के सभी 6,64,000 देहात में एक साथ चलाई जा रही है। इस मुहिम में किसानों के ग्रुपों से भी इस्तेफादा किया गया जिसके तहत एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स के जरिए किसानों को जोड़ा गया है। मुहिम की बड़े पैमाने पर तशहीर के लिए मुल्क भर में बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग समेत पब्लिसिटी मवाद की नुमाइश की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए डिजिटल रसाई के जरिए इस मुहिम के दायरे कार को किसानों तक पहुंचा दिया जाएगा। खेत बचाओ मुहिम 30 जून तक ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत के जरिए शुरू की गई मुल्कगीर अवामी तहरीक है। सरकारी स्कीमों के फवायद के तहत पंचायत से रियासती सतह तक तालमेल के जरिए किसानों को मिट्टी की जांच, सॉयल हेल्थ कार्ड और ज़राअत से मुतलिक दीगर स्कीमों का बराए रास्त फायदा फराहम करना है। ज़रई अफसरान गाँव गाँव जा रहे हैं और मौसम, मिट्टी और मार्केट के मुताबिक किसानों की रहनुमाई कर रहे हैं। اس مہم کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس کی گئی کہ اناج کے معاملے میں ملک کو ہر لحاظ سے خود کفیل بنایا جائے۔

0: ताकि इजाफी पैदावार को फरोख्त करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा माली फवाइद हासिल हो सके। किसान मुल्क के इक्तसादियात में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, लिहाजा खेत बचाओ अभियान मुल्क की इक्तसादियात को बराए रास्त फरोग देने की पहल है जिसके दूरस नतीजे निकलेंगे। तबसरा खत्म हुआ, शब खैर।
1: मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 199.4 मीटर और न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम भोजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों, बर्फीली चोटियों और सरहद पर तैनात हमारे जानबाज नौजवानों के दिलों में थोड़ी सी गर्माहट और अपनों की यादों का एहसास जगाने के लिए आपका दोस्त अब्बास यावर हाजिर हो चुका है एक बेहद खास संगीत में। 90s के उन सुनहरे इन और आशिकाना निशानियों के साथ जो आपको सीधे आपके घर, आपकी मोहब्बत और उन हसीन यादों की गलियों में ले चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज रात का ये हसीन सिलसिला। फौजी भाइयों, जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है ना, तो हालात बिल्कुल ऐसे ही होती है। घर से दूर बैठकर जब आप उन्हें याद करते हैं तो ये दिल वाकई थोड़ा पागल, थोड़ा बुरा सा महसूस करता है।

अभी आप समा फरमा रहे थे कुमार सानू और आलका याग्निक की आवाजों में साजन फिल्म का ये गीत। प्यार में थोड़ा दर्द ना हो तो वो प्यार ही क्या। ये गीत उन लम्हों के नाम जब आप ड्यूटी पर देश की हिफाजत कर रहा हो और वहां कोई आपकी सलामती की दुआएं मांग रहे हो, तो पेश है दिलवाले का ये

सुनो दोस्तों, इस गाने के लफ्जों को महसूस कीजिए। एक एक लफ्ज जैसे दिल को छू जाता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं, उन दिलों का इकरार है जो फासलों के बाद भी एक दूसरे के लिए तड़कती है। SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में लीजिए ये गीत समात फरमाइए।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, 90s के जिक्र हो और आशिकी के गाने ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये गाना हर उस जवान के नाम जिसने कभी ना कभी छुप छुप कर अपना चिट्ठी पढ़ी है। आशिकी फिल्म का ये गीत समाप्त फरमाए कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

दोस्तों, उदित नारायण और अलकेय अग्नि की आवाजों में कयामत से कयामत तक की ये गीत कहते हैं ना, हम सफर वो जो रास्ते में साथ दे और इंतजार वो जो हर फैसले को मिटा दे। ये बेहद खूबसूरत नगमा आप सभी के जज्बात को सलाम करने के लिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में है हम इस सुपरहिट आशिकाना गीत के साथ। मैं आप सभी से रुख्सत चाहूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपकी रात सुकून से भरी हो। इसी गीत के साथ आज का फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम खत्म करने की हमें दीजिए इजाजत। शब बखैर, जय हिंद।

0: दूसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनाधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल

0: पक्ष वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति चिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग

0: से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 ब्रांड्स।
0: उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
2: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। कोरोना का जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पांडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सीबीएसई की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए 1 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट 1 महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तलबा को फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात की वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चियों की दोबारा जांच जारी है। ये सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: अनासिर की जानिब से लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद CBSE पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। तहम CBSE ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह की मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। CBSE ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिना रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। CBSE ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा तारीखीन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में CBSE ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। CBSE का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से अकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: इस दौरान सीनियर IAS अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरीरी राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी CBSE में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफीदीन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी इकतदी और तालीमी तरक्की करें।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ

تب تک مغا می مہمان خالد اجازت خدا یار.